जोसोल पाथौ नेपाल सम्बन्धिन सौ पी खुता दिल्ला थु नवमी थु रेडियो नेपाल ख अन्य दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। सरकार मिटर ब्याज नापा स्वापुदुको फर्जी लिखत अवैध घोषणा यागुको छिगुदु प्रधान तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबार मेघचङ्गु बैठकमा मिटर ब्याज दुःख सिया चौपिन त लोपु बिगु विशेष निसङ्गु समिति मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन प्रतिनिधि दोति जुगु सम्झौता क घ्यागु कोसिनागु सरकारी प्रवक्ता नापा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल कनादिगु ख मन्त्री परिषद बैठकमा गणेश नेपाली आत्मदाह झाँकाया सत्य तथ्य दुवा लेता उच्च अदालत पूर्व न्यायाधीश केशव प्रसाद वास्तुलाय समेत जगते न्यायिक समिति निशोनेगु को छिनागुन जानकारी बिहादिगु खसा वेक्लन 2085 साल भदौ मसान्त तक पोखराव गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जुइगु नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नीति पार्किङ ल्यान्डिङ नेभिगेसन ठेवाके पूर्ण कथ छुट बिगु व ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क नङ्गिएको प्रतिशत ठेवा म्याकिगु कोछिनाको जानकारी ब्यादिल मन्त्री परिषद बैठकमा आर्थिक ऐन 2083 कथ शिक्षा समता शुल्क व स्वास्थ्य समता शुल्क खे मिनाहा यागु कोछिनागु नकनादिगु दुसा मन्त्री पोखरेलमा विशेष अदालत अध्यक्ष पद उच्च अदालत तुलसीपुर न्यायाधीश वासुदेव आचार्य त कोछिगु व श्रम अदालत अध्यक्ष सम उच्च अदालत सुर्खेत न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारी यता तोके नागुन जानकारी बिहादिल अध्ययना बैठकमा गुठी संस्थानीय प्रशासक पदे शैलेश राज कुँवर यता नियुक्त यागु कोचिनागु मन्त्री पोखरेललाई जानकारी बिहादिल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हस्तकला व्यवसाय नपाए नीति निर्माण व्यवसाय या संरक्षण लजका बोलङ्कीगु व हस्तकला या पुस्तान्तरण यायगु विशेषण सरकार प्रतिबद्ध जुयागु धयादिगुदु नेपाल हस्तकला व्यवसाय महासङ्घ प्रतिनिधि नापा प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषद कार्यालय मिग जुग सलसँग वेक्लान सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडले हस्तकला विकास बोर्ड निसोनेगु माग याता कया सरकार प्याची कथा सोया सोनागु धयादिगु कसा प्रधानमन्त्री शाह हस्तकला जोला निर्यात याबले क्यादैगु उकिया यागु प्रतिशत ठेवा बर्खा थुके डिना चोङली उकिया ता पुन निरन्तरता बिग विशेष छन् पलासा क्याता व्यवसाय दथु इना प्याना दिल अथियाना प्रधानमन्त्री शाह हस्तकला जोला निर्यात आतक सो घसडाके जुया चोङली उकिया पलेसा बिजक मूल्याङ्कन अनिवार्य याबले राजस्व उपकेता ग्वाली ठेनीगु पदाधिकारी सुज कथन ज्याय यागु बसङ पङ्का दिगुदु महासङ्घ प्रतिनिधि पिसा आयागु सरकार हस्तकला व्यवसाय या त थ्या बिगुले सरकार नापा ह्यागु सहकारी याता येका चुनागु धयादिगुदु प्रतिपक्षी दल त्यस मनसुन जागु विपद व्यवस्थापन सरकार पूर्व तयारी विशेष गृह मन्त्री ध्यान कोषाले त मिग राष्ट्रिय सभासँग जरुरी सार्वजनिक महत्व या ध्यान प्रस्ताव दर्ता या कगुदु प्रस्ताव मनसुन सक्रिय जुवा डेनियङ खुसीबा चल डुबिना मल व हिमताल तज्याइको जोफिङ जोखिम उपया चोङ्गु व थुकिया थो अवस्था या त सरकारी पूर्व तयारी माक मगागु धासे गृहमन्त्री नापा थ्वाथुई कलिसो फुना फङ्गु ख प्रस्ताव राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

0: मनसुन पूर्व तयारी र प्रति कार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2083 थुगुसी डेनियङ्क गे छदो च्यास खुइ च्याखा छेया निगुलाख नि खुदो खुस खुइ छमा मनो मनसुन जन्य विपत्त लिचो लाइगु अनुमान यागु दुस अध्ययना सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तथ्य समन्वय प्राधिकरण नेतृत्व खाली जुया चङ्गु पद पुअङ्के मागु विपद पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारिता वा दुर्गम लागाया मनुत तक्क सूचना ठेङ्केको वैकल्पिक लपुन सरकार पिथने मागो माग तु अथेना विपद या उद्धार राहत पुनस्थापना तयारी व जोखिम जागु समुदाय या सुरक्षा नीति सरकार यागु ज्या विशेष राष्ट्रिय सभा या त आफ्ला जानकारी याके त न प्रस्तावे माग त गुदु राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समिति आ छेलाबुला दया चङ्गु थिथि एन कानुन या कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गुदु समिति नि सोङ्गु एन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उप समिति एन कार्यान्वयन अवस्था विशेषण अध्ययन गु ख अध्ययन एन कार्यान्वयन मापन विशेषण मुटिन सोङ्गु डे या अभ्यास अध्ययन याता मा कथा या स्वपुदुगु स्वपुतैपी नपा सल व्याख्यता ओ सुइनु दिने समिति नपा प्रतिवेदन दुत बिता भाला लल हानागु समिति सभापति जानकारी ब्यादिल समिति विधायकी अन्तर सम्बन्ध अध्ययन याना सिफारिस यायता सांसद सुरेश आले मगरे समेत जकते ब्याग्न उपसमिति नापा निसङ्गुदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल यापी चकगुलुमन्ती दिवस थौथिथि ज्याजो घोषा गोया हना सङ्गुदु नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नापाया कम्युनिस्ट पार्टी थिथि ज्याजो याना थो दिवस हना सङ्गु ख विक्रम सम्बत 1981 असार 15 गते रामे छापे अबु भक्तलाल ओमा तुलसी कुमारिया माइलामा काया कथन जन्म जुमा पुष्पलाल प्रवास चेचना नेकपाया गतिविधि हिज्याका दिगु खसा वेक सहित गङ्गालाल या किजा ख पुष्पलाल कार्ल मार्क्स फेडरिक एङ्ग्लेस सोया दिगु कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो व नापाङ्गु खुसी नेपाली भाषा स अनुवाद याना दिगु नापा थिथि कृति व चोसु स नेपाली समाज या वर्ग विश्लेषण याना दिगु ख विक्रम सम्बत 2006 वैशाख्य निरञ्जन गोविन्द वैद्य नारायण विलास जोशी नरबहादुर कर्माचार्य मोती देवी साक्य नापा मिलेजुया वैक्ल भारत या कोलकाता नेकपा पलिस्ता याना दिगु ख स नेकपा पलिस्ता या न्य विक्रम सम्बत 1998 स वैक्ल प्रेम बहादुर कंसाकार शम्भुराम श्रेष्ठ बहादुर भारद्वाज व राम राजा नापा मिलेजुया नेपाली प्रजातान्त्रिक सङ्घ निसोना दिगु ख नेपाली कङ्ग्रेस नापा प्रजातान्त्रिक शक्ति नापा मिलेजुया संयुक्त आन्दोलन याना पञ्चायत व्यवस्था बुकेमा धैगु मत तया दिमा तया दिगु ख वेक विक्रम सम्बत 2035 साउन 7 गते भारतीय नु दिल्ली वास्याजुले मधुगु ख स्मृति दिवस लसता थौ नेकपा एमाले सोनी गया प्रदेश कमिटी छगु ज्याचो गोसा गोगु दुसा अथियाना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तेसन थिति लुमन्ती दिवस लसता थिति ज्याचो गोया हना सङ्गदु बागमती प्रदेश सरकार नेकपा एमाले पिहा वङ्गुदु एमाले या प्रदेश संसदीय दल या नेता जगन्नाथ थापलिया या पौ स मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया या त थ गुपाखे मन्त्री या मङ्का राजीनामा ललहाना दिगु ख प्रदेश सरकारस गठबन्धन उखे थुखे जुया चोङ्गु थिथि दल तथ्वी आपल खलाबला जुया चोङ्गु इले एमाले बागमती या विशेष थोको छिना कागु ख नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा यायता ह्युपा हपी राजनैतिक शक्ति दोती सहकार्य मजी मगागु दया दिगुदु जनकपुर धामेमिग गोसागुगु नेकपा मध्य प्रदेश एकता बैठक व प्रशिक्षण ज्यासोले संयोजक दाहाल ह्युपा पक्ष सङ्घर्ष याना चौपी राजनीति दल दोती मङ्का समझदारी व गुहाली काल बिल मयासे मगा धया दिगु ख संयोजक दाहाल वामपन्थी कम्युनिस्ट घटक दोती ध्रुवीकरण यासे एकता या पहल कदमी जुया चोङ्गु व सहकार्य विशेष नेकपा एमाले नापान कुत जुया चोङ्गु कना दिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा मन्त्रालय मातहत्य फुक्क निकाय स भाला कुबिया बानलागु लिचो पित हेत व बनलाइगु ज्या यायगु सोच विकास याना आफ्ला प्रशासनिक भिङ्केगु नापा ह्यानासँग आर्थिक दया नीति व ज्याचो व बजेट छेलाबुला याय त उज ब्यादिगु दु आम संचार मन्त्रालय मिग गोसागोगु कर्मचारी बैठक या त वैक्ल मन्त्रालय स कोची फैगु फाइल छनु स कोचा किगु व अन्तर निकाय समन्वय याय मागु फाइल न्यागु न्यानु दुने लिपाङको को छिनाखे ठेङ्के मागु व्यवस्था थत्यम पुङ के त नापा उचाउ बिया दिल। श्रम तथा व्यवसाय जन सुरक्षा विभाग श्रमिकको पीडित बिगु उजुरी निवेदन यता कार्यालय प्रमुखको स्वपुदुको कर्मचारी हगु छगौ दुने क घ्या मागु याना छक्क उजौ पिथङ्गुदु विभाग थगुमा तथ्य फुक श्रम रोजगार कार्यालय व व्यवसाय जन सुरक्षा और स्वास्थ्य केन्द्र त्यता परिपर्तन यासे थो उजौ बिगु ख हेलो सरकार सँग वैगु ख त क घ्या धुङ्कानी थो जानकारी थथे याकेता नापा विभाग उजौ बिगुदु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए जुगु तर थिति हुने इरहे व्यावसायिक उत्पादन या मफुगु निस झिन्च्यागु जलविद्युत आयोजना तेगु व्यावसायिक उत्पादन सुरु या मागु मिति लिपाङ्गु मिति आरसिओडी तनिगु ज्यान हेजा कागु धागुदु थुकिया नीति प्राधिकरण नापाङ्गु खुसी मापदण्ड या लिधंस आयोजना या त पेङ्गु पुचस वर्गीकरण यागु नीति छ गुदु वङ्गु असार 32 गते चङ्गु प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक अङ्कोसा गोगु भौतिक प्रगति पिपिए कथ या दायित्व या कार्यान्वयन आरसिओडी या अवस्था या लिधंस पेङ्गु पुच वर्गीकरण यागु कोछिगु ख वहे कोछिना कथन नापाङ्गु खुसी क व ख खे लागु आयोजना या आरसिडी तनिगु प्रक्रिया निहेजा कगु ख प्राधिकरण कथा आच्यादु निस गुई निगु मेगावाट क्षमता सोसव निगु जलविद्युत आयोजना देका चङ्गुदु व मध्य समूह क सेदो पेसव गुई छगु मेगावाट क्षमता या स्वच्छिट्या आयोजना त दुसा समूह ख स झिम्पेस निगु मेगावाट क्षमता खुई च्यागु आयोजना दुथ्या कगुदु ल्यौदुगु आयोजना समूह ग व ख खे वर्गीकृत यागुदु। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय दक्षिया इले निखुगु आयोजना तेगु वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए प्रतिवेदन स्वीकृति आगुदु मन्त्रालय कथा आर्थिक दल 2082-83 सुई निगु आयोजना क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृति आगुदु थुगुसी निखुगु इआइए प्रतिवेदन व खुगु पूरक इआइए प्रतिवेदन स्वीकृति आगु ख इआइए स्वीकृति जुगु आयोजना मध्ये यो जलविद्युत आयोजना त दु मन्त्रालय तेस दक्षिया इले गुइगु मेगावाट क्षमता या मर्स्याङ्दी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना निस नेगु मेगावाट क्षमता या भेरी एक अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना या इआइए स्वीकृति आगु ख कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी मानव वन्य जन्तु द्वन्द व्यवस्थापन नापानी सङ्घ समिति टास्क फोर्स लिपाङको प्रतिवेदन ल लागुदु प्रतिवेदन ल लासे मिगो वेकल देनियङका तिथि जिल्ला माकया हुने किसान त्यसमा फे माला चुङ्गु हाठ्या युगको गम्भीर ज्यावना सङ्घ नेथना देशै थुकिया दीर्घकालीन व्यावहारिक समाधान मालेता सरकार प्रतिबद्ध जुयागु धया दिगुदु आदेश पिन्या बुख पूर्वी अफगानिस्तानी आप्लङ वावे धुङ्कानी वोगु आका झाका खुसी बाखेलाना पिमा सिबे उपमनुषिगु संयुक्त राष्ट्र सङ्घ धागुदु खुसी बाखे दर्जनौ मनुत कहापा जुगु दुसा छु मनुत तना चोङ्गु संसार माध्यम टोलो न्युज थागु ख कङ्गे बोलाना चोङ्गु इबोला प्रकोप प्रकोप सी पिनी गुलिया अथे दोची पुले धुङ्कगुदु सार्वजनिक यागु आधिकारिक तथ्याङ्क स थो प्रकोपे आतक गुसव गुई गुमा मनुषी धुङ्कगुदु कङ्गोया स्वास्थ्य मन्त्रालय कथ सोमबार तक देया निदो पेस ने सोमा संक्रमित जुगु दुसा नेस सुई नेमा मनु बिरामी आइसोलेसन खेतया अस्पताल वासया कतगुदु वङ्गु मे 15 घोषणा यागु इबोला प्रकोप आतक यको हट्या फे मालिगु याना बोलाना सङ्गुदु आ मौसम या जानकारी थौँ देया हिमाली पहाडी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या तराई वा सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई या मोह थासे मला नापा लाप्सा तोया भतिजा तस्क वा वैगु जुगुदुसा पहाडी लगाया चपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगुदु कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी वा कर्णाली प्रदेश या पहाडी लगाया तस्क वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या वङ्गु नि पेगौस ये सुनि गया क्वाज सुइगु फुटी पेङ्गु डिग्रो सेल्सियस जति लुगु ख साथौ निने ये सुनि गया क्वाज नि गुगु निसे सुइ छगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सुनि गले सुथे सिया याता इजुया झिङ्यागु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलन हेता इजुया पेङ्गु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिसन शुभ
1: Thank you. सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

0: गाउँपालिका एकक 35 वर्षक सागर जेठारालाई समात्ल हो। यससँगै मोरङक रङ्गेली नगरपालिका साटकबाट खैरो हेरोइन सहित दुईजना भारतक मानुस समात्ल छिक। उसनिके कानुन छलीको कल कारोबारमा मिल्ल दोषमा नेपाल गञ्जक बस पार्ककबाट न्यूलक्ष्मी होटेल एन्ड लजक कर्मचारी वीर बहादुर राउतले 4,00,000 रुपियाँ भारतक पैसासहित जैल कानुनले समात्ल। जिल्ला पुलिस कार्यालय बाँके एसपी अङ्गुरजीसी जानकारी दिइलछात्। पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका 3 छहरा गैरामा टिप्पर दुर्घटना अख्ते एकजना ज्यान जैरेली। जैल कानु राति बुटवलकबाट तानसेनपट्टि जैटिकल टिप्पर सिद्धार्थ राजमार्गबाट हेठ लरीमा खस्ल हो। दुर्घटनामा परेको तिनाउ 3 सिसुवा बस्लार 35 वर्षक टिप्पर चलालार हेम बहादुर लम्तरिक ज्यान जैल जिल्ला पुलिस कार्यालय पाल्पै जनाल छिक। आजलाई दनवारी भाषा समाचार सिद्धिलिक हस्त सेवा ढोकरिनु।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार।

लसे मलोक झेंगे तु सनंगुप्लुति लाखपा शेर्पा आमोद की लानंगुप्लुइन थ शेर्पी के की खोर लतम ये तियो जुकु रिमलरंग तंद न्योमिन रोप ने तंग ओतुब दकपी शिरी की लतु क्याने एगे तोंगो की तंग सुंक्योप की वो की सिरुप खोर ला संग झेंगे तु लटिक पेसिक शोप तेरी सनंग गमला ती दकपी शिरी के एगे तोंगो पिन सिंग दकपी खांग बने रंग दिला कति गोचुगो की सिला सिंग तेरी सनंग गमला दकपु रंगी रंग लुगो की तंग ती तिंगला प्याजा त्योला संग लाम तिरगो की सिने झेंगे मिमंग त्योला शोबिन तक सिनाङ गोमसोकला दक्पी पेजी कि लापु दासाति खाङबारङ हिन्दु थप कि खाङबा पापा हामी कि लाभसिङ लाभसुङ सिसिङ तिथि ससे ल्याउन तिला सिजिङ पापा हामी लाम्बी दुप्ती पेजी मेजेउतङ गेतपुगल्सीमासङ गेतपुगल्सीमा लापुती लापुती सिनाङ टिकपेल लापुती तिङला सेक मेजेउतङ सिक्तिवासङ ससे तम्बुगिनो तिङला लोप्टोला गन लापुती चाहिँ खेपरसँग घिनो तुक्याने रेडियो से नङ्गिन जुन हो तुङ ल्याङ्गे थियो होला देख्पी प्याजा थियो होला सेरी तमियाति खाङ भनेर टिकपेना जुनङ लामतिरको कि तङ तिथि ससे ल्याउ घिनो सिनेर ल्याङ्गे थियो होला सबिन त पापा आमा त्यो सेरी तमियारङ मासे सिनङ तन्द लोपु दास त्यो भङ्गी सङ्गु चुनु तुप तप कि लोपु नासम्ती होसिङ दक्पी सेरी तमिया लोपुलाई अलग कलेति मेतु धकेरङ थोङ्गिनु तिला सिसिङ तन्द दास भङ्गी नै कि दुख्थ्यो झिङक्योङ क्यान हो तुप्ताङ खोङ तिवी तुसो तुसोला दि सेर्वी के लाम्ती रूप ल्यारिन्थ्यो झिङक्योङ खि हो तुप दक्पी यम्बु शेर्पछि सोकी सङ नरी जापेम बिसेर्मु अनलाइन थेमा सेर्वी के लाम तेरिनु हो तुप ताङ जम्दिङ शेर्पछि सोकी सङ शेर्पा ओल्ड सिने सेर्वी के लोपु एप्चिक जोन हो तुप लेङ्गे दक्पु तिरिला छ हो तु तम्नेर सिँ त दिरिङ बजार लुङ लुचिक जोकु दसे सिन्द्रो नाङ

जुसे रुप्तासे लेङ्गमाला छुबम्बला तेने ब्लोन खाङ्रे रुप्तासे लेङ्गमाला छुबान नेपाल लोलोलो भौगोलिक थुम्री उत्पादन लाबा स्थानीय सेदा ब्रान्डिङ लाबा थेन्थेदा स्थायित्व पिनमा ताम्रे काठुई लाबा हिन्ना रुप्तामा ब्लोन यादव से नेपालला स्थानीय उत्पादन सोन लाबारी थेन लेन लाबारी तोब ठिप सोबारी बाङ्ला सेलम्बला विशेष सुङबा ताम ब्लोन खाङसे पाङबामुला सानम रिथेन पर्यावरण ब्रोन गीता चौधरी थेन नेपाल दा जापानला ग्लेबोन माया दा तोरु रूपतासी लेङ्गमाला शुभमला ब्रोन खाङ रिथेन रूपतासी लेङ्गमालामा नेपालला सानम थुम्ला विकास आधुनिकीकरण थेन गोर्ङी हिल्ला ब्रेलबा दा कोङ्ब सुबा ताम्ने काठुइला बम्बला विषय ब्रोन खाङ सेपाङ बहिना चुबी मेङा छ सानम रिथेन पर्यावरण ब्रोन गीता चौधरी दा मिथेन रिलेटिभ सेम्च्यानला द्वन्द्व व्यवस्थापनला बारे सभा समिति से अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाब्ला बम्बला प्रतिवेदन किन्चुबान हिल्ला लामान जोङरी वाला माङसे सानम बोन गादे से नाबन खाबा समस्या द छाङनला बारी दीर्घकालीन थिन व्यवहारिक समाधान माय बारी सरकार से बाङ्ला बनमला विषय संक्षेप बमला ब्रोन चौधरी से समिति द वाला माङ व्यवस्थापनला बारी खाम्बा वैज्ञानिक थिन व्यवहारिक उपाय माइसी गे योजना सुबारिन निर्देशन दोन शुभ बमला सरकार से सहुलियत छे पिनमान खापसे ब्याज अनुदान सम्बन्धी गेविधिदा संशोधन लसी छे पिनमा अनुगमन लाबाथेन अनुदान दा व्यवस्थापन लसी व्यवस्थित थेन प्रभावकारी सुबारी ठिम्बा बमला निर्भन खाङसे सहुलियत छेला ब्याज अनुदान सम्बन्धी गेविधि गेक्ष संशोधन 2083 स्वीकृत लसी कार्यान्वयन डी बाबहिन्ना युल्ला लामन ग्लारी लसी तिलमा गोर ब्लिची सिङ्गिस विपत्ला घटनातामा मेन्दो निमी शिवम्बला विसाम मेन्दो घाइते तापम्बला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुसार पुख्रेसे छुवाबा गोर्ङा मेसे धिबा गोर्ङा भाललाई गोर्गिक ढुइला गोरचुइसे ढु सडक नङ्बाला गोरचुइसे ब्लिथेन स्यान लोलो लोलो गोर्ङा घटना गाते तापम्बला थे घटना ग्याम गोर्ङिस दिम्थेमे प्रभाव प्रभावित तापम्बला ढुइला घटनारी पर्वतासे मेन्दो निमी शिवम्बला विसाम मेन्दो घाँ खाइते तापम्बला विपद ग्याम करोड गिक्से लाख कुचुई क्षति तापम्बला तिनीलाई विवरण विसाम खबरी बाँकी मला बागमती प्रदेश री निबा नोर्दिङ री गोर ब्लिची से ब्लि सडक ग्याम थेन चाम शोभमला बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास ब्लोनखाङ से फेबर टाङ्गला ढुचुई से सोमथिक ब्लिची प्रतिशत खर्च लाभमला विषय ब्लोनखाङला सुङबोन मदन कुमार आले मगर से सुङबहिन्ना 94 ब्लोनखाङ से निबा नोर्दिङ री गार्जगिक सोमचुई से ढुथिक ढुची ढु किलोमिटर ग्राभेल सडक ग्याम ज्याप शोभा गार्जङी सोमचुई से गिक थिक सोमचुई से गिक किलोमिटर पिस थेन ढलान लाभा गोडु झोलुङ्गे चाम गोर्चुई सिङ्गी सरकारी गेदिम ग्यार्ज गेक सिङ्गी सामुदायिक दिम ग्यार्ज कुसे ब्लिचुई लोलो लोलो गेखोर्से दिम शोभाला छ्याम्रे गोर्चुई से निस डिही गादे शोभा मुला बिसे ब्लोन खाङसे पाङ्बा मुला ओसेम जोन प्रशासन गेदिम

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झास सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अर्ग्यानिक उत्पादनके प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशीमा मिलेबा लेल निर्देशन देलनि छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आय अर्ग्यानिक कृषि व्यवसायीकी छाता संगठन अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालके पदाधिकारी सब हुनका सँग कैने विचार विमर्शको क्रममा ओहेन निर्देशन देलनि छ। अर्ग्यानिक उत्पादनके अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण क्रम महग होइत आएलासँग प्रमाणीकरणमा देल दैत आयल 75% धरि अनुदान बन्द भेलापर एहिके पुनः सञ्चालन करबाक लेल व्यवसायी सब माग कयने छलथि। एहि मागके सम्बन्धमे प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखल गेल हुनक सचिवालय जनौलक अछि। प्रधानमन्त्री शाह अनियन्त्रित रासायनिक खाद आ विषादीके नियन्त्रण करैत अर्ग्यानिक कृषि प्रवर्धनके लेल सरकार आवश्यक कदम उठायत से बतौलनि। प्राङ्गणिक मल उत्पादन करयवला निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थाके सहयोग अनुदान देल जेबाक चाही। व्यवसायी सबके माग हिसाबे व्यवस्था करय लेल सेहो प्रधानमन्त्री शाह सम्बन्धित निकायके निर्देशन देलनि छ। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नेपालके ग्रे लिस्ट बाहर निकाल सरकार निरन्तर प्रयास कर रहल बतौलनि छ। कर प्रशासनके पारदर्शी प्रभावकारी आ विश्वसनीय बनाव सकलापर नेपाल ग्रे लिस्टसँ शीघ्र बाहर निकलत से हुनक विश्वास छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम पार्सल देशैभरिके विभाग माथातके कर अधिकृत सबके आइ सम्बोधन करैत ओ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अपराधके कर प्रशासनके दिशसँ मिहीन ढङ्गसँ हेबाक चाही पर जोर देलनि। अर्थमन्त्री वागले कर प्रशासनक सबके वृत्ति विकास एवं हुनका सबके काज करयवला तरिका राज्यके कैने सहयोगके आधार पर प्राथमिकताके संग देखल जात बतौलनि। ओ कर संकलनके लेल जबरदस्ती आ त्रसित बनाकर नहि भऽ स्वैच्छिक कर अनुपालन मार्फत करदाता सबके करके दायरामे समेटल जेबाक चाही पर जोर देलनि। कर प्रशासनके चुस्त बनाबा जनशक्ति पूर्वाधार वा सूचना प्रविधि जेहन कोनो वादके अभाव अयला पर निर्धक भक कह लेल सेहो आग्रह कयलनि। कर प्रशासनमे काज करयवला आ राज्यके लाभ दियाबयवलाके प्रोत्साहन कयल जेबाक ओ स्पष्ट कयलनि। एहि वर्षके बजेटसँ अर्थतन्त्रके जहाजके मॉडलके रूपमे बुझ आग्रह करैत ओ आबयवला 4 आर्थिक वर्षके बजेट मार्फत सरकार बनाबय चाहने अर्थतन्त्रके आधार देखल जायत से बतौने छलथि। सरकार सहूलियतपूर्ण कर्जामे प्रदान करैत आयल ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिके संशोधन करैत ऋण प्रवाह अनुगमन आ अनुदान व्यवस्थापनके थप व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनेबाक व्यवस्था कयलक अछि। अर्थ मन्त्रालय सहूलियतपूर्ण कर्जाक लेल ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पहिल संशोधन 2083 स्वीकृत करैत कार्यान्वयनमे आनलक अछि। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयके वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक कयलक अछि। संशोधित कार्यविधि हिसाबे सहूलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ब्याज अनुदान उपलब्ध करावला प्रक्रिया कर्जा उपयोग के अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली के स्पष्ट अथवा व्यवस्थित बनाल गेल अछि। अनुदान प्राप्त कने ऋणी तोकने उद्देश्य हिसाबे कर्जा उपयोग करबाक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमित अनुगमन का संबंधित निकाय में विवरण उपलब्ध करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। कार्यविधि में सहूलियतपूर्ण कर्जा के दुरुपयोग रोकक के अनुदान वितरण में पारदर्शिता कायम करक के तथा अनुदान प्राप्त कर्जा के प्रभावकारिता अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य के संग विभिन्न व्यवस्था में संशोधन कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। अहिना क बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधित सरकारी निकाय लाभग्राही के भूमिका तथा जिम्मेवारी के थप स्पष्ट कयल गेल अछि। कर्जा उपयोग में अनियमितता वा कार्यविधि विपरीत कार्य कयल गेल भेटल गेला पर ब्याज अनुदान रोका करबाक वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कार्रवाई करबाक व्यवस्था सेहो संशोधित कार्यविधि में समावेश कयल गेल अछि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी संग नेपालक लेल जापानक राजदूत मायदा तोरु शिष्टाचार भेंट वार्ता कयलनि अछि। मंत्रालय में आई भेल भेंट में हुनका सबके बीच नेपाल के कृषि क्षेत्र के विकास आधुनिकीकरण आ दू देश बीच के द्विपक्षीय संबंध के थप सुदृढ़ बनेबाक विषय में विचार विमर्श भेल मंत्रालय जनौलक अछि। एहि अवसर पर मंत्री चौधरी सन 1954 सँ महत्वपूर्ण आ विश्वासगर विकास साझेदार के रूप में जापान पहुंचवित आल सहयोग के प्रशंसा करैत नेपाल के बागवानी विकास ब्यू विजन सुधार परियोजना में जापान सरकार आ जायका के ने योगदान प्रति आभार व्यक्त कयलनि। ओ व्यवस्थित क्षेत्रीय कृषि बाजार निर्माण आ उच्च प्रविधि के दुग्ध प्रशोधन प्लांट स्थापना के लेल सहयोग के अपेक्षा करैत ब्यू विजन जैविक विषादी आ मिश्रित मल उत्पादन में जापानी लगानी आ प्रविधि के आना
पहल के अनुरोध कलन। हुनका सब बीच कृषि अनुसंधान कृषि अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए लर्न एंड अर्न कार्यक्रम धान खेती में यांत्रिकीकरण के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली में सहकार्य करबाक विषय में सेहो विचार विमर्श भेल मंत्रालय जनौलक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली सेवाग्राही संघ घूस लड़ रहा अवस्था में आंतरिक राजस्व कार्यालय लहान के कर अधिकृत युवराज पाल के पकड़लक। आयोग के बर्दीवास से खटल गेल टोली सेवाग्राही संघ घूस लड़ रहा अवस्था में कर अधिकृत पाल के पकड़ने आयोग के सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेल के जानकारी दिलन। लहान स्थित एक कंपनी के कर परीक्षण में सहज कही बना देव कहित कर अधिकृत पाल सेवाग्राही संघ घूस लेने अभियोग। सूचना अधिकारी पोखरेल के हिसाबे घूस के रकम एक कीन कर अधिकृत पालों पर आवश्यक अनुसंधान भ रहा है। जिला प्रशासन कार्यालय सिराहा सार्वजनिक छुट्टी के दिन शनि आ रवि सेहो राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी सेवा जारी राखत। कार्यालय के सूचना जारी कर सेवाग्राही के संख्या बढ़त गेल जनबित आवे वाला साउन 7 गते से दोसर सूचना जारी नहीं होबा धर के लिए सार्वजनिक छुट्टी के दिन सेहो शनि दिन आ रवि दिन राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी सेवा संचालन हाथ से जनाल गेल। राष्ट्रीय परिचय पत्र बनावा सेवाग्राही के संख्या दैनिक बढ़त गेल संदर्भ में सार्वजनिक छुट्टी के दिन भिनसर 10 बजे से लकर राष्ट्रीय परिचय पत्र संबंधी सेवा संचालन होबाक सहायक प्रमुख जिलाधिकारी चेतराज बराल द्वारा जारी सूचना में उल्लेख है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मानसून अवधि भर बाढ़ भूस्खलन कटान डुबान ठनका सर्पदंश तथा जस जेहन जोखिम के संभावना के उच्च रहला से विशेष सावधानी अपनेबाक लेल आग्रह कलक। प्राधिकरण जनधन के सुरक्षा के लिए पूर्व सावधानी अपनेबा लेल आग्रह करत यात्रा कर से पहिने मौसम तथा सड़क अवस्था के संदर्भ में जानकारी लेबल लेल कहने। अहिना वर्षा के समय यात्रा करत काल सावधानी अपनाबक लेल सेहो कहल गेल। पानि पड़ल समय सकधेर रात के समय में यात्रा नहीं कर लेल बाढ़ हाल समय नदी पार कर के प्रयास नहीं कर के लेल प्राधिकरण सूचना मार्फत अनुरोध कलक। वर्षा भरल समय में जारे बीछा माछ मार चाहे पौड़ी खेल व नदी में नहीं जा के लेल भूस्खलन के जोखिम भेल क्षेत्र के लग पास अनावश्यक रूप में आवागमन नहीं करबाक लेल प्राधिकरण ध्यान आकर्षण करौलक। विपद संबंधी सूचना एवं उद्धार के लिए 12-34-100 आ 11-14 आ मौसम संबंधी जानकारी के लिए 11-55 में संपर्क करबाक लेल अनुरोध कलक। नेपाल प्रहरी के पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गोविंद कुमार शाह अपने ठगी में पड़ल कहकर दुख व्यक्त कने छथि। अपन धरौटी में रहल जमीन बैंक में पुनः धरौटी राख दूसरे के 4 करोड़ ऋण लेने जानकारी प्राप्त भेला के बाद स्वयं ठगी में पड़ल जानकारी दिलन। धौनसा के विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 8 घर भ हाल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 में बसोबास करित आयल सुरक्षाकर्मी शाह स्वयं ठगायल जानकारी प्राप्त भेला के बाद प्रहरी में उजूरी देने आई पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिलन। पूर्व SSP शाह के हिसाबे विक्रम संवत 2079 में चीन जान के व्यक्ति संग 99 लाख ऋण ल विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 6 तिनकोरिया के पत्नी के नाम में रहल 5 कट्ठा 13 धूर दृष्टिबंधक क देने हुनका जानकारी नहीं द ओ व्यक्ति दोसर के ओ जमीन पुनः धरौटी में राख कर 4 करोड़ ऋण लेने छल। पूर्व सुरक्षाकर्मी शाह के हिसाबे ऋण के सवा ब्याज तीरा के व जमीन फिरता कर देवाक लेल बेर बेर आग्रह करतो व्यक्ति विभिन्न बहाना बनौलाक बाद ओ ठगी के उजूरी दर्ता करौलन। पूर्व वरिष्ठ उपरीक्षक शाह के जाहिरी के आधार पर धौनसा प्रहरी ठगी के अभियोग लागल स्थानीय गोपाल शाह हुनक पत्नी रेखा कुमारी शाह आ हुनक बेटा हरेराम शाह के पकड़लक। आब खेल समाचार। जापान में आयोजना हो वाला 20वां एशियन गेम्स में नेपाल पुरुष क्रिकेट टोली समूह ए से प्रतिस्पर्धा करत। आयोजक आईकेने समूह विभाजन हिसाबे नेपाल समूह ए में पड़ल अ समूह में नेपाल सहित आयोजक जापान आ अफगानिस्तान रहल। अहिना समूह बी में हांगकांग मलेशिया आ ओमान रहल। भारत बांग्लादेश श्रीलंका आ पाकिस्तान सोझे सोटर क्वार्टर फाइनल में स्थान पौने। समूह के शीर्ष दूटा टोली क्वार्टर फाइनल में पहुँचत। क्वार्टर फाइनल में पहुँचल नेपाल भारत आ पाकिस्तान जेहन मजबूत टोली संग खेल के मौका पात। इससे पहले चीन में भेल 19वां एशियन गेम्स में नेपाल क्वार्टर फाइनल में भारत संग खेल पौने छल। एक खेल में नेपाल पराजित भेल छल। एशियन गेम्स के खेल सब T20 फॉर्मेट में हैत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिका ईरान युद्ध के कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति आ समुद्री व्यापार में बढ़ रहा जोखिम देखल गेलाक बाद दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र के संगठन आसियान अंतर्राष्ट्रीय जलघाटी में निर्बाध आवागमन आ नौवहन स्वतंत्रता सुनिश्चित करबाक लेल आह्वान करत। मनीला में संपन्न विदेश मंत्री स्तरीय बैठक पश्चात जारी होवला मस्यौदा संयुक्त वक्तव्य में हरमुज जलघाटी खुला राख के चाही पर विशेष जोर दिल गेल छे। मस्यौदा वक्तव्य में मध्य पूर्व के द्वंद्व थप नहीं बढ़ावा सब पक्ष के संयमता अपनेबाक लेल आग्रह कयल गेल छे। संगे अंतर्राष्ट्रीय जलघाटी में जहाज आ हवाई उड़ान के स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करबाक चाही विषय के पहिल बेर स्पष्ट रूप में समावेश कयल गेल छे। आसियान बैठक में सहभागी होबा मनीला पहुंचल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ईरान हरमुज जलघाटी नियंत्रण में राखब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आवागमन के लिए खतरनाक नजीर बनि सकबाक चेतावनी देने छलथि। ओ नौवहन स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत भेल उल्लेख कयलनि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश में ही ऑर्गेनिक आपदों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का निर्देश। बर्ड फ्लू संक्रमण नियंत्रण में सावन एक के बाद बर्ड फ्लू संक्रमण शून्य होने की पशु सेवा विभाग ने दी जानकारी। बाजुरा की 9 स्थानीय तहों के 115 बस्तियों को तत्काल स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। जिला आपदा प्रबंधन समिति का निष्कर्ष और अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु कार्यक्रम संचालन संबंधी समझौता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश में ही ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज ऑर्गेनिक एसोसिएशन नेपाल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन करने वाले निजी उद्योगों और सरकारी संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवसायियों की मांग के अनुरूप आवश्यक व्यवस्था करने के लिए संबंधित निकायों को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि सरकार अनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर नियंत्रण करते हुए ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऑर्गेनिक खाद्य के उत्पादन या खरीद पर रासायनिक उर्वरकों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पिछले 2 वर्षों से बंद है और इस समस्या के कानूनी समाधान के लिए संबंधित मंत्रालय आवश्यक कार्यविधि तैयार कर रहा है। बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक महंगी है, इसलिए सरकार के नियंत्रण में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण एजेंसी देश में ही स्थापित की जानी चाहिए। बाजुरा के सभी 9 स्थानीय निकाय बाढ़ और भूस्खलन के उच्च जोखिम में है। जिला आपदा प्रबंधन समिति की आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रतिकार योजना 2083 के अनुसार जिले की लगभग 150 बस्तियां उच्च जोखिम में है, जबकि 115 बस्तियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। नवलपुर के हुपसे कोट गांवपालिका 5 स्थित केरुंगे खोला के उद्गम क्षेत्र में सक्रिय राप्चे भूस्खलन के कारण 42 परिवार उच्च जोखिम में है। यह निष्कर्ष जिला आपदा प्रबंधन समिति ने निकाला है। समिति ने बुधवार को स्थलीय निरीक्षण के बाद बस्ती के सभी 42 घरों को अत्यधिक जोखिम ग्रस्त घोषित करते हुए उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने तथा दीर्घकालिक एकीकृत पुनर्वास योजना तैयार करने की सिफारिश की है। पक्षियों में फैला बर्ड फ्लू संक्रमण अब नियंत्रण में आने लगा है। पशु सेवा विभाग के महानिर्देशक डॉ. उमेश दहाल के अनुसार श्रावण 1 से अब तक बर्ड फ्लू का कोई नया संक्रमण नहीं पाया गया है। हालांकि संक्रमित क्षेत्रों के आसपास से नमूने एकत्र कर उनकी जांच का कार्य अभी भी जारी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ की 48वीं पुण्यतिथि आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एमाले की राजधानी प्रदेश समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि जनता के अधिकारों की स्थापना और लोकतांत्रिक परिवर्तन का नेतृत्व राजनीतिक दलों ने ही किया है। वहीं पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा कीर्तिपुर में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के संयोजक पुष्प कमल दहाल ने कहा कि गणतंत्र की उपलब्धियों की रक्षा के लिए प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने कहा कि पार्टी में 4 पीढ़ियों के साथ थी एक साथ होने के कारण वे सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय नीति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा 44वें बीपी स्मृति दिवस के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नई सोच और नए विचारों को भी अपनाते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा ने सभी से बीपी के आदर्शों, विचारों और मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने अपने क्षेत्र में शिक्षक बनने का संकल्प लेने का आह्वान किया। एक अन्य उपाध्यक्ष पुष्पा भुसाल ने कहा कि विशेष महाधिवेशन ने पार्टी के विधान को नए ढंग से आगे बढ़ाया है। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि नेपाली फिल्म उद्योग को उद्योग के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आवश्यक नीतिगत पहल की जाएगी। फिल्म क्षेत्र की समस्याओं, विकास, प्रोत्साहन तथा उद्योग के रूप में मान्यता देने के विषय पर आज मंत्रालय में फिल्म कर्मियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार फिल्मों को रचनात्मक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े उद्योग के रूप में विकसित करने के पक्ष में है। बैठक में फिल्म निर्देशक एवं केंद्रीय फिल्म जांच समिति के सदस्य मनोज पंडित, नेपाल फिल्म निर्माता संघ के महासचिव खगेंद्र लामिछा ने, निर्देशक एवं निर्माता निश्चल बस्नेत तथा निर्माता एवं छायाकार शैलेंद्र ध्वज कार्की उपस्थित थे। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। कानून न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित कानून निर्माण एवं सुधार वर्ष अभियान को सफल बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष मंत्री गौतम होंगी। समिति में संबंधित विषयों के मंत्री, महान्याय बादी, नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत के मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद कार्यालय के कानून सचिव, संबंधित मंत्रालयों के सचिव, नेपाल कानून आयोग के सचिव तथा कानून न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय के सचिव सदस्य सचिव होंगे। प्रधान न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा मैत्रीपूर्ण भारत यात्रा पर रवाना हुए हैं। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला के अनुसार वे अपने भारतीय समकक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर आज भारत के लिए प्रस्थान किए हैं। कैंसर तथा अन्य कुछ गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली दवाइयों की समय समय पर होने वाली कमी को स्थायी रूप से दूर करने के लिए सरकार ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण दवाओं की कमी की समस्या को देखते हुए सरकार दवाओं के मूल्य समायोजन सहित अन्य आवश्यक उपाय लागू करने की तैयारी कर रही है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टीम ने सेवाग्राही से रिश्वत लेते हुए लहान स्थित आंतरिक राजस्व कार्यालय के कर अधिकारी युवराज पाल को गिरफ्तार किया है। आयोग की बर्दीबास से गई टीम ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आयोग के सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेल ने यह जानकारी दी। आरोप है कि लहान स्थित एक कंपनी के कर परीक्षण को आसान बनाने के नाम पर कर अधिकारी पाल ने सेवाग्राही से रिश्वत ली है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और सऊदी अरब ने शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में तकनीकी, कानून और व्यवसायिक सहयोग देगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच लगभग 30 वर्षों की बहु अरब डॉलर की साझेदारी का आधार बनेगा। समझौते पर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां, सऊदी अरब में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण, तकनीक और ईंधन आपूर्ति में भाग ले सकेंगी। इसका उद्देश्य सऊदी अरब की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करना और उसकी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से धीरे धीरे विविध बनाना है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में ही ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का निर्देश। बर्ड फ्लू संक्रमण नियंत्रण में सावन एक के बाद बर्ड फ्लू संक्रमण शून्य होने की पशु सेवा विभाग ने दी जानकारी। बाजुरा की 9 स्थानीय तहों के 115 बस्तियों को तत्काल स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। जिला आपदा प्रबंधन समिति का निष्कर्ष और अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु कार्यक्रम संचालन संबंधी समझौता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
6: *14# ह्यास डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: झण्डु आयुर्वेद,
8: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
7: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
8: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
7: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
8: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
9: खहरे खोला लेकमा परेको पानीले ल्याउने बाढी हो। तपाईँ बसेको ठाउँमा वर्षा नभए पनि अचानक बाढी आउन सक्छ। पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटेर पनि बाढी आउने गर्छ। खहरे खोला भिरालो जमिनमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने गर्छ। खहरे खोलाले ढुङ्गा माटो लेदो बगाउँदै ल्याउनाले यो निकै शक्तिशाली हुने गर्छ। बच्ने उपायहरू: लेकतिर पानी परे नपरेको याद गर्ने, खहरे खोलाले बाटो बनाएको ठाउँमा नजाने, त्यहाँ वस्तुभाव नचढाउने, बाढी आएको बेला खहरे खोला बिना कुनै तयारी नतर्ने, खहरे खोलामा बाढी आएको थाहा पाए लगत्तै तल्लो बस्तीका मानिसहरूलाई खबर गर्ने।
10: बर्खायामसँगै बाढी, पहिरो विपदका घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यसैले विपद बारे सचेत बनौ, विपदबाट जोगिन पूर्व तयारी गरौं। जनहितका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल।
11: त्यसलाई त म कहाँ छाड्छु र, मैले जानेछ, भेटौँ न पो।
12: ओहो दिदी, नमस्ते है, नमस्ते।
11: नमस्ते। ओहो, वकिल बाबु पो आउनु भएछ।
12: अनि यति धेरै रिस चाहिँ कोसँग हो?
11: कोसँग हुनु नि, त्यही पल्लो घर कि बोक्सीसँग नि, त्यसैले त मेरो छोरालाई बिरामी बनाए कि।
12: लौ हेर, बोल्नै नहुने कुरा पो बोल्नु भयो त। बोक्सीको आरोप लगाएर महिला विरुद्ध गरिने क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई दण्डित गर्न बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन 2072 निर्माण भई कार्यान्वयन समेत भइसकेका छ।
11: झन्डै मबाट ठुलो गल्ती भएको
13: जानी राखौँ। कोही कसैलाई अन्धविश्वास र शङ्काको भरमा बोक्सी भनेमा वा आरोप लगाएमा मात्र पनि कानुनले दण्डित गर्छ। कोही बोक्सी हुँदैनन्, सबैलाई मानवताको व्यवहार गरौँ, कानुनको पालना गरौँ।
14: जनचेतनाका लागि रेडियो नेपाल।
15: आफन्तसँगको भेट त सधैँ हुन्छ,
11: तर मीडिया मार्फतको भेटको मजा नै अर्कै।
15: के तपाईँ आफ्ना आफन्तहरूलाई केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आवाज मार्फत? यदि चाहनुहुन्छ भने मेल गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम फ्यान बक्समा।
11: प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 1:20 देखि करिब 2 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ अनिता आचार्यको साथमा कार्यक्रम फ्यान बक्स।
15: कार्यक्रम फ्यान बक्स।

मंजिल सामने हो तो रास्ता न मोड़ना, मन में जो भी हो सपना वो मत तोड़ना। मंजिल सामने हो तो रास्ता न मोड़ना, मन में जो भी हो सपना वो मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारों को छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी। दोस्तों, मीटिंग में 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलो हर्ज के साथ साथ FM बैंड 98, 100 और 103 मेगा हर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np, साथ ही www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। साथ ही इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। अगर आप भी कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक

36 इन्होंने बड़े अंक में लिखा है, तो ये थोड़ा सा मज़ेदार है। इन्होंने लिखा है कि आरजे जी सादर सप्रेम नमस्कार, माँ बमलेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ भारत, नारायण लाल साहू। इन्होंने अब कुछ परिजनों के नाम भी लिए, मित्रों के, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, इन्होंने परिजनों के नाम लिए हैं। और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, गीत गाता चल फिल्म से, धरती मेरी माता पिता आसमान। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

ये गाना आपने सुना फिल्म गीत का तचल से, जो कि सन 1975 में रिलीज हुई थी, जसपाल सिंह की आवाज़ में। इसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन हैं। और इसी तरह ये दूसरा पत्र है आंध्र प्रदेश से, आरएस विजय कुमार जी का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत से। ये लिखते हैं कि रेडियो नेपाल से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम मधुरिमा के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता मुकेश जी, रमिता जी, सीमा जी तथा कार्यक्रम संचालक पुष्परत्न जी को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत से आपका प्रिय श्रोता आर एस विजय कुमार का सादर अभिवादन। इस माह की 11 तारीख को भारत की एक और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी जी का 88 वर्ष की उम्र में कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में निधन हो गया। एस जानकी जी का जन्म दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 23 अप्रैल सन 1938 को हुआ था। वैसे तो उन्होंने संगीत की कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं ली, किंतु सहज रूप से ही उनकी आवाज में एक ऐसी प्रतिभा छिपी हुई थी कि वो किसी भी स्वर को आसानी से समझ लेती थी। वे सहज रूप से एक नन्हे बच्चे की आवाज या फिर एक नौजवान लड़की की आवाज या फिर एक बूढ़े माँ की आवाज अपने कंठ से निकाल सकती थी। एस जानकी जी ने अपने जीवन काल में 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में करीब 48,000 गाने गाए। मुख्य रूप से एस जानकी जी ने दक्षिण भारतीय भाषाएं

से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम भाषाओं में अधिक गाने गाए, किंतु हिंदी में भी उनके कई लोकप्रिय गाने हैं जिसे उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा के लिए गाया। इसके अलावा एस जानकी जी ने कई विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए, जैसे कि जापानी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी एवं सिंहल भाषाएं शामिल हैं। इन्होंने आगे लिखा कि भारत की एक अमूल्य एवं महान कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एस जानकी जी के स्वर में गाया यह लोकप्रिय गीत रेडियो नेपाल के असंख्य श्रोताओं के लिए कृपया सुनाने का कष्ट करें, ताकि सभी श्रोताओं को फिर एक बार एस जानकी जी की मधुर आवाज का एहसास हो सके। धन्यवाद सहित सादर नमन आपका प्रिय श्रोता आर एस विजय कुमार, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत से। इन्होंने लिखा कि गीत के बोल हैं, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहो, क्या बात है। और आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

सन् 1987 भने फिल्म सत्यमेव जयते गाना आपने सुना एस जानकी की आवाज में। इसके गीतकार हैं फारूक कैसर और संगीतकार बप्पी लहरी। और ये पत्र है पवन कुमार पंकज जी का वैशाली बिहार भारत से। ये लिखते हैं, मधुरिमा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले मुकेश सर, रमिता मैम, सीमा मैम के साथ पुष्प सर को हमारा सादर व सप्रेम अभिवादन। गत दो हफ्ते से मधुरिमा कार्यक्रम से न जुड़ पाए, इस वजह से मन में थोड़ी सी आशंका हुई। पहली बार हम आपके कार्यक्रम में चंद लाइन प्रेषित कर रहे हैं, ये लाइन अमौलिक हैं। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आभार स्वरूप संकलित कर मधुरिमा कार्यक्रम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खुद ही लिखें, हाँ इधर उधर से हम ले ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी खूबसूरत लाइनें इन्होंने भेजी है कि आवाज़ ऊँची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, आवाज़ ऊँची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन बात ऊँची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे, क्या बात है। इसी तरह दुखी दिल भरे गिलास की तरह होता है, दुखी दिल भरे गिलास की तरह होता है, मामूली ठेस पर भी छलक पड़ता है। बहुत बढ़िया। कुछ शिकायतें बनी रहें तो बेहतर है, चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। बहुत खूब पंकज जी। सुना है बहुत बारिश है आपके शहर में, ज्यादा भीगना मत, गलत फहमियां धुल गई तो हम बहुत याद आएंगे, क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने आगे लिखा है कि जिंदगी को जितना सादा रखोगे दिल उतना ही शांत रहेगा। सुना था लोग थकने के बाद अपने घर जाते हैं, पर जो घर से ही थक जाए वो कहाँ जाए, क्या बात है। बहुत अहम प्रश्न है और बहुत खूबसूरत लाइन आपने भेजी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आगे है कि अपना सफर अकेला ही ठीक है, बेवजह किसी से उम्मीद रखना ठीक नहीं। बहुत खूब। और ये आगे लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम में गमन फिल्म का गीत छाया गांगुली के स्वर में सुनना चाहता हूं। गाने के बोल हैं, रात भर आपकी याद आती रही, आभार व धन्यवाद आप सभी के प्रति। प्रेषक पवन कुमार पंकज, स्थान वैशाली बिहार। माफ कीजिएगा, ये फिल्म का ही गाना तो हम नहीं सुना पाएंगे, हम नहीं मिल पाया, माफी चाहते हैं। लेकिन हाँ, यही गीत और छाया गांगुली के ही स्वर में हम लाइव शो वाला गाना हम सुना रहे हैं आपको, और उम्मीद है कि आप सबको ये गाना पसंद आएगा। तो पेश है ये गीत।

छाया गांगुली की आवाज में यह गजल आपने सुनी पवन कुमार पंकज जी की फरमाइश पर। और फिर से ये पत्र है मेरे हाथ में अनिल ताम्रकार जी का, शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश भारत से। ये लिखते हैं कि प्यार करने को लेकर प्यार करने वाले हमेशा यह जिक्र करते हैं कि उनका प्यार बहुत ही पवित्र है। प्यार की अविरल धारा जिंदगी की हर मोड़ पर हमेशा बहती रहती है। भावनाओं में बहकर प्यार की खूबसूरती का अंदाज हमेशा ही अव्वल रहा है और हमेशा रहेगा। क्या बात है। प्यार की कसक ही कुछ ऐसी होती है कि जीवन के सफर में जब कभी भी किसी से आंखें चार होती हैं तो प्यार की गहराइयां खुद ब खुद जुबान से जिक्र करने लगती हैं। कुछ इस तरीके से, अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। क्या बात है। और ये इनका अंदाज है पत्र लिखने का। ये अपने पत्र में ही गीत की लाइनें फिरो कर भेजते हैं। फिल्म का नाम ठोकर, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रज्जक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। और इन्होंने कहा कि कार्यक्रम में ये गीत सुनाने की कृपा करें। तो कृपा तो नहीं, हम सेवा कर रहे हैं अनिल जी, और आपकी सेवा में पेश है ये गीत।

सन 1974 में बनी फिल्म ठोकर से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। इसके गीतकार हैं साजन देहलवी और संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी। और ये पत्र है नूरुल हुदा लश्कर जी का, असम उत्तर जश्नाबाद हिंदुस्तान से। इन्होंने लिखा है कि झूठ बोल के सबका दिल जीतना मुझे नहीं आया, झूठ बोल के सबका दिल जीतना मुझे नहीं आया, हमने सच बोलकर कितने रिश्ते यूं ही गवा दिए। क्या बात है, बहुत खूब। और इन्होंने लिखा है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना मुकेश जी, मुझे ये गाना जरूर सुना दीजिएगा कृपा करके। तो आइए पेश है उनकी पसंद से ये गीत।

सन् 1994 में बनी फिल्म सलामी से गाना आपने सुना आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। और ये श्याम सुंदर महेश्वरी सर जी ने भेजा था कमेंट, वो भेजते रहते हैं, पर उनमें से एक मैंने रखा है, फारबगंज बिहार से हैं वो, भारत से, कि परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से। क्या बात है, बहुत खूब। और इसी तरह रुमान मिदिल जी हैं बिहार भारत से, इन्होंने लिखा है, पहले गाने की फरमाइश इन्होंने की कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और आगे ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं खुद से, तो ये लिखा है कि न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, कि न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। क्या बात है, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। बहुत खूब। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। और इन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो ये गाना प्ले करें, तो आइए सुनते हैं उनकी पसंद पर ये गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गाना आपने सुना, फिल्म गुमराह से जो कि सन 1963 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि, और हिमकेश्वर साहू जी हैं भाटापुरा छत्तीसगढ़ भारत से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है फिल्म बेताब से, बादल यूं गरजता है। और अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम में आ चुके हैं, लेकिन ये इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम सुनाएंगे ज़रूर, लेकिन इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए ज़रूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गज़ल, जोक्स ज़रूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। हमारा ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और अब हम सुनेंगे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में ये गीत फिल्म बेताब से, जो किसान 1983 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्रावधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहे रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।